0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে। নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা,
3: নমস্কার নমস্কার নমস্কার এবং নমস্কার আরো নমস্কার, অসংখ্য নমস্কার, প্রচুর নমস্কার নিয়ে অসুতমা সৎকামায়া।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:07 है। स्टूडियो की घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसमें ढेरों बातें होती हैं, साथ ही साथ एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत भी सुनवाए जाते हैं इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप, और जिसमें नॉनस्टॉप गपशप होती है अलग अलग विषयों को लेकर। जी हाँ, जहाँ पर बात होती है आज के खास दिन को लेकर, जहाँ पर बात होती है स्पेशल वाले बर्थडे को लेकर, इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी पूर्वक बातें करते हैं हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल सुन रहे हैं आप आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को, जो लेकर हाजिर हो चुकी है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर। जी हाँ, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ इस कार्यक्रम की, और उसके बाद गानों का तड़का भी लगता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ बातें होंगी और बहुत सी। हाँ, तो फिलहाल प्यारा सा मौसम है, खूबसूरत सा मौसम है, बरसात का मौसम है, भीगा भीगा मौसम है। जी हाँ, इस भीगे भीगे मौसम का मज़ा आप भरपूर तरीके से उठाते रहिए। वैसे तो 10:10 स्टूडियो की घड़ी का समय, और अब तक कई सारे लोग अपने कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकल चुके होंगे, बच्चे स्कूल तक पहुँच चुके होंगे या फिर स्कूल ऑलरेडी चल रहा होगा। तो खैर, दिन भर में हमारे कितने सारे काम होते हैं ना, और कई सारे कामों को लेकर हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और ख़ासकर जब बरसात के मौसम की बात आती हो तो फिर क्या ही कहने भाई। एक तरफ तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मज़ा भी तो आता है ना। जी हाँ भाई, बरसात में भीगते हुए काम करने के लिए जाना ये वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब हम काम को ख़त्म करने के बाद घर की ओर वापसी करते हैं, तब यही वाला जो भीगा मौसम है ये एक अलग अंदाज में हमें महसूस होता है ना। है, और जब हम काम पर जाते हैं उस वक्त भीगने का मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि भाई हमारे दिलो दिमाग में ये टेंशन भी तो काम कर रहा होता है कि भाई भीग जाएंगे तो आखिर हम काम किस तरीके से करेंगे, और भीगे हुए कपड़ों के साथ हो जाएगी हमारी तो टाई टाई फिश, यानी कि बीमार पड़ने की भी तो संभावना रहती है ना। और भाई बरसात का मौसम है तो आ जाती है इस मौसम के साथ कई सारी एलर्जिक समस्याएँ। जी, इन्हें लेकर भी बातें होंगी, लेकिन इन्हीं समस्याओं के बारे में हम भूल जाते हैं जब हम हमारे काम को अच्छे तरीके से निपटाने के बाद घर वापसी करते हैं, तब चाहे जितना भी हम भीगने, चाहे जितने भी कीचड़ हमारे कपड़ों में लग जाए, पैरों में लग जाए, खैर कोई परेशानी नहीं है, और यही सोचते हैं ना कि घर जाकर हमें आखिर चेंज ही तो करना है, तो फिर भीगने में आखिर समस्या क्या है, और इतनी सारी बातें आखिर सोचनी ही क्यों है जब हमें घर ही तो जाना है ना। तो चलिए, घर वापसी आपकी इस वक्त हो ना हो, अगर आप काम पर जा रहे हैं तो बिल्कुल मन लगा कर अपना काम करें, और साथ ही साथ दिल लगा कर इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि बातें होंगी बहुत से इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ प्यारे प्यारे नगमे भी पहुंच रहे हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिलहाल पूर्णिमा की आवाज़ में सुनिए इस प्यारे से गीत को।

छतरी खोलिए ना खोलिए, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आप एलर्जी की समस्या के परेशान होते हैं, ख़ासकर बरसात के मौसम में, तो छतरी आपके लिए खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर

बरसात के मौसम में एलर्जी की समस्या ने एक बार आपको पसंद कर लिया, जी हाँ, चाहने लगा ये जो परेशानी है, तो फिर इतने आसानी से जो है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है ये समस्या जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए अगर आप बरसात के मौसम में अगर एलर्जी की परेशानी से ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, तो बेहतर यही है कि बरसात के मौसम में अगर आपने बाहर निकलना ही है तो छाते का साथ तो आपने रखना ही, और जब भी बरसात हो रही हो तो बरसात होने से पहले ही आप छतरी को खोल लीजिए, यही बेहतर होगा आपके लिए अगर आप एलर्जी की समस्या से परेशान होते हैं, खासकर इस मौसम में। और बार बार मैं इस परेशानी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ इसके बारे में भी बताऊँ आपको कि आज का जो दिन है वो डेडिकेटेड है इसी परेशानी के नाम। जी हाँ, परेशानी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है उनके लिए वाकई में बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। खैर, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं होती है उन्हें मौसम में बदलाव काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं देता है, लेकिन जिन लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और इसीलिए वर्ल्ड एलर्जी डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, और ख़ास कर ये हिदायत दी जाती है उन लोगों को जिन्हें एलर्जी की समस्या होती है कि अगर मौसम में बदलाव की वजह से एलर्जी की समस्या होती है, या फिर खासकर बरसात के मौसम में हो, या फिर खान पान से जुड़े एलर्जी की समस्या हो, उन्हें उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों को खाने से उन्हें एलर्जी की परेशानी हो रही हो। और अगर बरसात से जुड़े समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है तो बेहतर होगा कि उस तरह के प्रिकॉशंस वे लेकर चलें, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में ढेरों काम हमने करने होते हैं, और ऐसे में अगर हम तबीयत ख़राब करके बैठे रहें तो फिर कैसे जल सकता है ना भाई। हमारा काम तो आखिर हमने ही करना है, और सिर्फ करना ही नहीं है बल्कि पूरे एनर्जी के साथ अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन जो है वो बिल्कुल बेकार चला गया है ना। तो इसीलिए सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक अच्छे से गाने को भी सुनना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा सा गाना अगर आप सुनते हैं तो आपका मूड जो है वो बिल्कुल बन जाता है, तैयार हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो चलिए आपके मूड को थोड़ा सा और ठीक करें और सुनवाएं आपको अरिजीत सिंह और चिन्मय की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा तराना। उसके बाद तो बातें होती ही रहेंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप।

प्रिय इंसान का नाम आप दोहराते रहिए। और इसी बीच मैं आपको जल्दी से बताऊं कि आज का दिन आखिर क्यों और कब मनाने की शुरुआत हुई। वैसे तो वर्ल्ड एलर्जी डे अर्थात विश्व एलर्जी दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है और हर साल दुनिया भर में एलर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा और अन्य एलर्जी संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए आज के दिन को मनाया जाता है। तो अगर इतिहास की बात करें तो शुरुआत हुई थी इस दिन को मनाने की साल 2005 से। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा पहली बार विश्व एलर्जी दिवस जुलाई 2005 में मनाया गया था और सप्ताह की शुरुआत की अगर बात करें तो 2011 में इस आयोजन के दायरे को बढ़ाते हुए इसे सप्ताह भर के कार्यक्रम में बदल दिया गया। और ऐसे में इस दिन को मनाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि एलर्जी कोई सामान्य बीमारी नहीं है, कोई सामान्य तकलीफ नहीं है। जिन लोगों को नहीं होती उनके लिए ये बहुत ही सामान्य सी बात होती होगी, लेकिन जो इस समस्या से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है और वाकई में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसीलिए इस चीज़ को अनदेखा ना करते हुए सही तरीके से एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है उसे किया जाना चाहिए और इस वजह से जन जन तक इस विषय को लेकर संदेश पहुंचाने का ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो थी आज के खास दिन को लेकर बात, लेकिन इसके अलावा भी एक और कारण से भी आज के दिन को मनाया जाता है, बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल मुझे ना कुछ बताना था पर क्या करूं, इतनी सारी बातें हैं ना कि बातें हैं जी हाँ, खूबसूरत तराने भी तो हैं इंतज़ार में और इतनी सारी चीज़ों में आखिर मैं भूल ही गई कि आखिर मुझे कहना क्या है, क्या था। खैर बातें तो होती रहेंगी और इसी के साथ गीत संगीत का सिलसिला भी चलता रहेगा इसी कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं फिलहाल। और जैसे ही याद आता है ना मुझे वो वाला किस्सा, वो वाली बात जिसे मैं साझा करना चाहती थी आप सभी श्रोताओं के साथ, जल्द से जल्द बताऊंगी उसी बात को। लेकिन फिलहाल रुख करें एक प्यारे से गीत की ओर और उसके बाद तो बातें होती रहेंगी। फिलहाल आवाज़ है कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ में सुनते रहिए ये गीत।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 34 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय संग हम शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। इसे सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और एक प्यारे से तराने को आप तक पहुँचाने से पहले मैं बात कर रही थी ना भूलने की। जी हाँ, और कभी कभार छोटी मोटी चीज़ों को भूल लाना हेल्दी हैबिट के तौर पर ही गिना जाता है। और डॉक्टर्स के अलावा एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि रोज़मर्रा के कामकाज में हम कुछ एक चीज़ें अगर भूल भी जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं समझी जाती है, बल्कि हेल्दी हैबिट के अंदर ही शामिल किया जाता है। और तो और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग प्यार में पड़ चुके हैं और उसके बावजूद कई सारी चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब इश्क में पड़ने के बाद इंसान खुद का नाम ही भूल जा रहा है। याद है आपको वो वाला गाना? जी हाँ, वही वाला गाना जिसे बॉलीवुड की दुनिया में लिखा गया था। और बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे अनगिनत गाने हैं जिन्हें भूलने से लिखा गया है, यानी कि भूलने से जुड़ी हुई है अनगिनत फिल्मी गीत। तो फिलहाल मैं एक खास बात आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी भूलने से जुड़ी हुई नहीं है ये बात, बिल्कुल तरोताज़ा खबर मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए। खैर मैं बताऊँ कि घूमने फिरने के बारे में हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं ना, और अगर बात हो विदेश में घूमने की तो एक लंबी चौड़े लिस्ट हम सबसे पहले बनाते हैं कि जिस देश में हम घूमने जा रहे हैं उस देश में जाने से पहले हमें किस किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। तो एक के बाद एक चीज़ों के बारे में हम नोट डाउन करते रहते हैं और बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ यानी कि एक परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है कई बार, वो है पैसों को लेकर लेन देन, यानी कि पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे लेकर कई बार हमें विदेश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब से आपको ये नहीं करना पड़ेगा। और क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश के जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ये ऐलान कर दिया है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाला है। और अगर आप इंडोनेशिया घूमने के बारे में सोच रहे हैं और लंबी चौड़े लिस्ट में अगर आपने इस परेशानी के बारे में लिखा हुआ है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसा आपने सुना है, तो अब से आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आखिर क्यों नहीं करना पड़ेगा, चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊं कि इससे भारतीय यात्रियों के लिए स्थानीय पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया में भुगतान करना आसान हो जाने वाला है। और इससे इंडोनेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए नोट बदलने का झंझट खत्म होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। और क्या है? भारत के UPI की सर्विस अब सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं बल्कि 10 देशों में पहुंच चुकी है। इनमें इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर, US,

फ्रांस और मॉरिशस, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और नेपाल भी शामिल हैं। तो अगर इनमें से किसी देश में अगर आप घूमने फिरने के बारे में सोच रहे थे और लंबे चौड़े लिस्ट में अगर आपने पैसों के लेन देन को लेकर समस्या के बारे में लिखी हो, तो ये समस्या आप समस्या नहीं रहने वाली है। जी हाँ, इसीलिए पैसों के लेन देन को लेकर जो टेंशन आपके दिमाग में अगर घूम रही हो, तो उस टेंशन को, उस फिक्र को थोड़ा सा दूर हटा कर अब आराम से आप उस देश में घूमने के बारे में अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए, प्लानिंग आप करते रहिए और फिलहाल मैं क्या करूँ, मैं सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना और उसके बाद बातें होंगी कुछ खास, कुछ अलग विषय को लेकर। फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप, जिसमें नॉनस्टॉप गपशप के साथ एक से बढ़कर एक तराने भी पहुँचाए जाते हैं आप सभी श्रोताओं तक।

चलिए अब जल्दी से आपको बताऊं कि नॉन स्टॉप गपशप के अंतर्गत बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन मनाते हैं आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अभिनेत्री नीतू सिंह आज अपना जन्मदिन मनाती हैं। नीतू सिंह एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी अदाकारी 70 और 80 के दशक में अलग अलग फिल्मों के माध्यम से दिखाकर हजारों लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ, ऋषि कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद भले ही एक लंबी दूरी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से बना ली थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने वापसी की थी और 26 साल के बाद फिर एक बार 2009 में बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने वापसी की थी और अलग अलग फिल्मों के माध्यम से उन्होंने अपनी अदाकारी को फिर से अपने दर्शकों के सामने रखा और ये प्रमाण कर दिया कि भले ही गैप चाहे कितने ही सालों का हो, लेकिन उसके बाद भी अभिनय के साथ जुड़ा हुआ उनका जो प्यार था वो किसी भी हद तक कम उन्होंने नहीं होने दिया। इसके अलावा एक और अभिनेत्री है जो मनाती है अपना हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन उनका जो ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया के साथ नहीं है बल्कि ज़्यादातर साउथ की फिल्मों के साथ वे जुड़ी हुई हैं। बात कर रही हूँ अभिनेत्री रेवती के बारे में। रेवती भी अपना जन्मदिन आज ही के दिन मनाती हैं। रेवती एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री के साथ निर्देशक के तौर पर भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो 8 जुलाई 1966 को कोची केरल में उनका जन्म हुआ था और तमिल, मलयालम, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उन्होंने काम किया है। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। करियर के बात अगर मैं करूं तो करियर की शुरुआत उन्होंने की थी 1983 में और अगर हिंदी फिल्मों की बात करूं तो हिंदी सिनेमा के लिए बॉलीवुड में उन्होंने लव, मुस्कुराहट, रात और धूप जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है। इसके अलावा 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी का उन्होंने सफल निर्देशन भी किया था। इसके अलावा एक और फिल्म का भी निर्देशन उन्होंने किया था जिसका नाम था फिर मिलेंगे, जो कि रिलीज हुई थी साल 2004 में। फिर मिलेंगे रेवती द्वारा निर्देशित 2004 की एक भारतीय, जी हाँ, हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म थी जिसमें शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने अभिनय किया था। फिल्म एड्स के विषय पर आधारित थी और हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित थी ये फिल्म जिसका नाम है फिर मिलेंगे। तो रिलीज़ होने पर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो समीक्षकों द्वारा इसे पसंद किया गया और काफ़ी सराहा भी गया इस फिल्म को। तो फिर मिलेंगे को शेट्टी के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है जिसने उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और फिल्म फेयर अवार्ड्स दिलवाए। तो बात हो रही है एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अभिनय की दुनिया में अपना नाम तो कमाया ही, साथ ही साथ निर्देशन की दुनिया में भी उन्होंने कमाल कर दिया। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत। फिलहाल शंकर महादेवन की आवाज़ में सुनिए इस गीत को।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गानों के साथ लैस ये कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप फिलहाल आज के लिए करते हैं समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो है वो कब से इशारा किए जा रही है कि आज के इस कार्यक्रम का जो समय है बस यहीं तक का, और उसके बाद जो है विदाई का जो पल है वो आ रहा है। और सभी श्रोताओं को कहना होगा कि आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त। और चलिए जाने से पहले सुनाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिए इजाज़त, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने ही मिल रही हूँ बहुत जल्द। समय रहेगा 11:10। और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड, लेकर आऊँगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।

अरे बाबा, इतना कुछ तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए आपका थोड़ा सा समय। और ये जो आधा घंटा, आधा घंटा तो अब फिलहाल रह नहीं गया, लेकिन उससे थोड़ा कम, तो ये जो समय है 3:30 बजे तक का, ये समय अभी फिलहाल मेरा हो गया। और आप अपना समय देंगे मुझे, तो उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगी? अरे, खूबसूरत गाने दूंगी, कुछ इधर उधर की फिल्मी जानकारी दूंगी, कुछ काम की बातें होंगी, कितना कुछ है करने को। इसलिए आप लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचिए कि ये जो समय है ये ठंडा वाला समय है, बहुत हैपनिंग समय हम एक साथ बिताएंगे। 3 का तड़का में जैनी का किस्सा था, आज आप जुड़े हैं ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। 3:09 और 22 सेकेंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में, एकदम सही समय। और 3 का तड़का में फिल्मी खबरें हम एकदम आपके लिए इधर से उधर से हर तरफ से लेकर आते हैं, ढूंढ कर, और क्या जो आपको पता होनी चाहिए। यानी ये खबरें अगर आपको पता हैं तो आप अपडेटेड हैं कि कौन सी फिल्म देख ली है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है, कौन सी फिल्म अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, कौन सी नई फिल्म मार्केट में आने वाली। इतनी सारी खबरें हैं फिल्मों की, क्योंकि सिनेमा से बढ़कर माँ तो कोई और है ही नहीं हमारी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया कि कांतारा फिल्म के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी का जन्मदिन था, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि फिर से पार्ट 3 की कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है। उन्होंने खुलकर बात की है इस विषय पर और बताया है कि कांतारा 3 आएगी, ज़रूर बनेगी ये फिल्म, क्योंकि जो फिल्म, दोनों फिल्में जो हैं वो कमर्शियल तौर पर अपार सफल रहीं, वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, यानी कहानी आगे

बढ़ेगी, उन्होंने ये कहा है। और ये भी कहा है कि वो निर्देशन से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनको मानसिक शांति मिलती है और खुशी भी मिलती है। तो अपनी लेखकों की टीम के साथ वो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, तो जो इंतजार कर रहे हैं, जो फैंस हैं, मुरीद हैं, वो चाहते हैं कि इस फिल्म का एक और इंस्टॉलमेंट रिलीज हो। आपके लिए ये अच्छी वाली खबर। और भी ऐसी खबरों के लिए, छुटपुट छुटपुट खबरों के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगला गाना आप सबके लिए एक अच्छा वाला गाना, नीति मोहन की आवाज में फिल्म पद्मावत से। सुनते रहें, साथ रहें, बने रहें FM रेनबो पर।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। क्या आपको मालूम है, पिछले साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए इस मिशन को एक ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। भारत की फसल प्रणालियों और आहार में दालों का विशेष महत्व है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता भी है। बढ़ती आय और बढ़ते जीवन के साथ, यानी जो हमारा जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अधिक जो उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ रही है, तो इसके कारण ये हुआ है कि दालों की जो खपत है उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादन जो है वो मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिसके कारण दालों

0: आयात में 15-20% की वृद्धि हुई है। इस आयात निर्भरता को कम करने, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, उत्पादन को अधिकतम करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई थी। दालों की नवीनतम किस्मों के विकास और प्रसार पर जोर दिया जा रहा है जो उच्च उत्पादकता वाली कीट प्रतिरोधी और जलवायु प्रतिरोधी हों। क्षेत्रीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में बहुस्थानीय प्रशिक्षण और परीक्षण की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पंचवर्षीय चक्रीय बीज उत्पादन योजनाएं तैयार करेंगे। प्रजनन बीज उत्पादन की निगरानी ICAR द्वारा की जाएगी। इस मिशन का उद्देश्य चावल की परती भूमि और अन्य विविधीकरण योग्य भूमि को लक्षित करके पहचान के दलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करना है, जिसका समर्थन अंतर फसलीय खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के जरिए किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 88 लाख बीज किट निशुल्क वितरित किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसान और बीज उत्पादक दोनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यकीनन इस मिशन का उद्देश्य दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना है और इस क्षेत्र में सरकार की ये पहल जरूर कामयाब होगी। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का पहला लुक यानी फर्स्ट लुक जो है वो आउट हो गया है, बाहर आ गया है, सबने देख लिया है। और आज क्योंकि है सौरव गांगुली का जन्मदिन, इस मौके पर उनकी बायोपिक का ये फर्स्ट लुक जो है वो रिलीज किया गया है। और राजकुमार राव का इस फिल्म में जिस तरह का लुक है ऑटोमेटिकली वो भी रिवील हो गया है। और वैसे तो उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं लग रही दोनों के चेहरे में, वो बहुत ऑब्वियस ही बात है, दो अलग अलग लोग तो सिमिलर कैसे दिखेंगे। लेकिन इतने मजे हुए कलाकार हैं राजकुमार राव कि मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस रोल को अदा करेंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट लुक का जो पोस्टर है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बताऊं कि इसमें राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नैटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। और ये पल भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार लम्हों में से एक माना जाता है। गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए और बेखौफ दौर की शुरुआत का ये जो मोमेंट था ना, ये प्रतीक बन गया था और आज भी आत्मविश्वास, जुनून और जज्बे की मिसाल माना जाता है। तो ये फिल्म अभी फिलहाल तो इस साल रिलीज़ नहीं होगी, 2027 में रिलीज़ होगी, तो हम सब रहेंगे इस फिल्म के इंतज़ार में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा गाना तो मैं सुनवा ही सकती हूँ, किसी भी तरह का इंतज़ार करने की मुझे ज़रूरत नहीं, ना ही आपको है। सुनते रहे तीन का तड़का। Oh,

मेरे प्यारे श्रोताओं, अब तीन का तकड़ा तकड़ा देखिए, इस गीत को सुनते हुए जो मेरी जबान है ये भी थोड़ी मस्खरी करने लगी, तो आप तकड़े को तड़का समझें। और ये जो हमारा समय था, आधे घंटे वाला समय, ये अब समाप्त होने वाला है। और कार्यक्रम का अंतिम गाना आप सबकी नज़र करना चाहूँगी, सुमेधा कड़माहे की आवाज़ में नज्म नज्म बरेली की बर्फी का ये गीत आप सुनेंगे ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता, तीन का तड़का। जहाँ पर हम करते हैं सिनेमा की बातें, अब अपने एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इसके ठीक बाद हम सुनेंगे विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित एक खास कार्यक्रम 3:30 पर। तो चलिए अब चैनिका को आप दे दें इजाजत, टाटा बाय बाय। आप सबके लिए नज्म नज्म फ्रॉम द मूवी बरेली की बर्फी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन

0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।

0: देखो वरिंडा, ये अजगर का चित्र।
1: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
0: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
1: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
0: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
0: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharani, Shat Shure Sharani.
2: Shuncho, Cafe Kolkata, Cafe Kolkata, 107 FM Rainbow Te, Cafe Kolkata.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

saat. हम तो साथ साथ हैं ही, लेकिन हमारे साथ आज कौन है इन हिंदी फिल्मी गीतों के माध्यम से, अगर आप जानना चाहते हैं तो बताती हूँ ना। आज है एक खास दिन, आज हम सब की बेहद पसंदीदा अभिनेत्री

श्री नीतू सिंह या नीतू कपूर आप जो भी कहें, उनका जन्मदिन है, 68वां जन्मदिन मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे। और इसलिए इस खास मौके पर आज हम उनके साथ ऋषि कपूर की जोड़ी को सेलिब्रेट करेंगे हम साथ साथ में। बेहद ही खास जोड़ी, रियल और रियल लाइफ दोनों ही तरफ अगर हम देखें। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, हम तो जानते हैं कि 70 और 80 के दशक के दौरान रुपहले पर्दे पर राज करती थीं नीतू सिंह, और अपनी दमदार एक्टिंग, एकदम फर्स्ट क्लास डांसिंग स्किल्स के दम पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और डेब्यू किया 6 साल की उम्र में बतौर एक बाल कलाकार। और ये चाइल्ड एक्टर धीरे धीरे तब्दील हो गया एक मंझे हुए कलाकार के रूप में, और फिल्म सूरज के साथ उन्होंने अपनी ये जो शुरुआत है वो की थी हिंदी फिल्मों में, और 1973 में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म रिक्शावाला में नजर आई थी। ऋषि कपूर के साथ उनकी बेहद दिलचस्प लव स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ये जो लव स्टोरी है वो किस तरह आगे बढ़ी, और इसकी एक ठोस वजह ये है कि दोनों ने मिलकर बाप रे बाप कितनी सारे फिल्में की, एकदम एक दर्जन फिल्में दोनों ने साथ मिलकर की, 12 फिल्में इस जोड़ी ने साथ की, जिनमें खेल खेल में, रफू चक्कर, जिसका गाना अभी अभी आपने सुना यहाँ पर, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। तो इसके अलावा कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, जहरीला इंसान, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल अनजाने में, झूठा कहीं का, और धन दौलत जैसी फिल्में शामिल हैं। तो आज इस पहले घंटे में, छायालोक के पहले घंटे में, हम लोग हम साथ साथ के अंतर्गत नीतू सिंह और ऋषि कपूर की फिल्मों के गाने सुनेंगे। चलिए दूसरे गीत की तरफ रुख करते हैं। ये फिल्म जो है ये कुछ खास नहीं चली थी, साउथ की एक फिल्म की रीमेक थी ये फिल्म, और बॉक्स ऑफिस पर एकदम अच्छा बिजनेस नहीं किया था इस फिल्म में, लेकिन ये गाना जो है ना, क्या कमाल का गाना है, जहरीला इंसान से आपके लिए ओ हंसनी।

साथ। चलिए अब आपको एक ऐसी फिल्म का गाना सुनवाया जाए जो थी एक मल्टी स्टारर फिल्म, जहां पर हमने तीन हीरो और तीन हीरोइनें देखी, लेकिन उनमें से एक जो जोड़ा था वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का जोड़ा था। मैं बात कर रही हूँ अमर अकबर और एंथनी की। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत, जहाँ हमने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश इन चारों को साथ गाते सुना, और पर्दे पर हमने देखा सभी सितारों को जो इस फिल्म में हमें नजर आए थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और मैं सोच रही थी कि इस फिल्म से कौन सा गाना आपके लिए चुनूं, तो ये जो गाना ना एक नॉस्टैल्जिया इस गीत के साथ जुड़ा हुआ है, फिल्म की याद आ जाती है। अमर अकबर एंथनी के सारे गाने माशाल्लाह क्या खूबसूरत गाने, पर्दा है पर्दा से लेकर तैयब अली, हर तरह का गाना, शिरडी वाले साईं बाबा, सारे गाने। और ये जो गाना, ये इसमें वो एसेंस है। और देखिए तीनों अभिनेत्रियों के लिए इकलौती लता मंगेशकर की आवाज़ ही काफ़ी रही, ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल बात। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। आप लोग सुन रहे हैं हम साथ साथ नीतू सिंह और ऋषि कपूर स्पेशल, चैनिका है आपके साथ, ओनली ऑन FM 107।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: हम साथ साथ।

दुनिया मेरी जेब में, इस फिल्म का गीत हमने सुना, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की, संगीतकार राजेश रोशन और गीतकार गुलशन बावरा। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी की आज हो रही है बातें हम साथ साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत। हम सुनते हैं ये कार्यक्रम हर बुधवार की शाम 7 बजे ओनली ऑन छाया लोक FM रेनबो कोलकाता। तो एक जगह मैंने एक अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अनुसार नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात जब हुई तब ऋषि कपूर बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौर में दोनों मिले और कुछ खास नहीं रही पहली मुलाकात और ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई। और इसके बाद दोनों ने साथ में काम किया फिल्म जहरीला इंसान में, और सेट पर जब दोनों साथ काम करते थे तो ऋषि कपूर प्रैंकस्टर थे, बहुत परेशान करते थे नीतू सिंह को और वो चिढ़ भी जाती थी और हमेशा दोनों में छोटी मोटी झोंक नोक झोंक नोक झोंक लगी रहती थी। धीरे धीरे ये जो तकरार है ये दोस्ती में बदल गई और आगे चलकर ये जो दोस्ती है धीरे धीरे काफी गहरी हो गई। और एक समय ऐसा भी था ये सबसे खूबसूरत एक कह सकते कि मोड़ है दोनों के रिश्ते में कि जब नीतू सिंह ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए उनकी तरफ से चिट्ठियाँ लिखती थी, यानी ऋषि कपूर के नाम से चिट्ठियाँ जाती और लिखती थी नीतू सिंह। और वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि जो दोस्ती थी दोनों की वो प्यार में बदल गई और अमर अकबर एंथनी की शूटिंग के दौरान दोनों का जो ये प्यार था ये परवान चढ़ा। और फिर क्या था, देयर वाज नो लुकिंग बैक, साथ में बहुत सारी फिल्में भी की और ये लाजमी था कि दोनों नज़दीक आ गए। अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा है, अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी लिखा है और ये अमर अकबर एंथनी के सेट्स पे जिस तरह वो नज़दीक आए इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, किस तरह से वो उस वक्त डेट कर रहे थे और डेटिंग की परिभाषा क्या हुआ करती थी उस दौर में, उन्होंने ये भी लिखा है। और ये था कि माता पिता को उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था लेकिन उनको पता था ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बारे में, और इसलिए जब भी उनके लिए कोई रिश्ते आए, उनके लिए बहुत रिश्ते आते थे, तो उन्होंने हमेशा राज कपूर और कृष्णा कपूर ने उन रिश्तों को हमेशा मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह साथ में हैं। तो ये तो था इनकी जिंदगी का वो प्यार वाला एंगल जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा। प्रोफेशनल लाइफ से जो ज़ाती ज़िंदगी है उस तक दोनों का जो सफ़र है इस तरह से अलग अलग पड़ावों से होते हुए पहुंच गया और फिर दोनों साथ आए, शादी कर ली और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। लेकिन ये जो जोड़ा हमने फिल्मों में देखा, जिस तरह से रुपहले पर्दे पर दोनों साथ आए, हर एक फिल्म हर एक गाना सच में बहुत बहुत बहुत स्पेशल था। वो आज भी हमारी जो मेमोरी है उस पर बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। ये गाने हम सुन रहे हैं और सच में लग रहा है कि हमें ये गाने जो है उसी दौर में 70 के दशक में 80 के दशक में हम ट्रांसपोर्ट हुए जा रहे हैं। एक और खूबसूरत सा गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम बताऊँ कि ना बताऊँ आपको, चलिए बताई देती हूँ, नहीं तो फिर भी अगर नबी बताती तो आप गेस कर लेते। दूसरा आदमी से, राजेश रोशन का संगीत, एक दफा फिर

जी हाँ, एक दफा फिर इसलिए क्योंकि दुनिया मेरी जेब में का संगीत भी उन्हीं का था, और दूसरा आदमी के गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकले थे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, ओनली ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम साथ साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

साथ। अभी अभी आपको मैंने सुनवाया एक रेयर जेम, जिंदा दिल फिल्म से ऋषि कपूर और नीतू सिंह की फिल्म थी ये, और इस फिल्म में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार थे वर्मा मलिक। और कार्यक्रम जारी है हम साथ साथ छाया लोक के अंतर्गत। हर बुधवार की शाम आप सुनते हैं ये कार्यक्रम, जहां हम कुछ बेहद सक्सेसफुल या खूबसूरत या मुकम्मल जोड़ियों की बात करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये जोड़ियां हमें एंटरटेन कर रही हैं सालों से या कर चुकी हैं, और इसी सिलसिले में आज क्योंकि नीतू सिंह का जन्मदिन है तो हमने नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को चुना है, और उन्हीं की फिल्मों के गीत मैं आपको अब तक सुनवा रही हूँ। और ज़्यादा समय मेरे और आपके बीच में है नहीं, केवल तकरीबन 16.5 मिनट शेष हैं, 8 बज जाएंगे तो मुझे टाटा बाय बाय आपको कहना होगा, लेकिन उससे पहले भी चंद बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। और कुछ और गीत आपको मैं ज़रूर सुनवाना चाहूँगी, ऐसे मतलब जाने अनजाने। ये जो गीत है थोड़ा कम ही आप सुन पाए होंगे, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि जब शादी हो गई दोनों की 1980 में, तो

नीतू सिंह ने एक ब्रेक लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका फिल्मी सफ़र वहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने 26 साल के बाद करीब 26 ईयर्स उन्होंने सिल्वर स्क्रीन से दूर रहने के बाद फिर से वापसी की। वापसी के बाद हमने उनको देखा लव आजकल में, वहाँ भी ऋषि कपूर थे, दो दुनी चार में भी ऋषि कपूर थे, बेशरम में ऋषि कपूर थे, रणवीर कपूर थे, मतलब पूरी जो फैमिली है, मतलब पिता पुत्र माता रणबीर कपूर, ऋषि कपूर और नीतू सिंह उर्फ कपूर, तीनों उस फिल्म में थे। और इसके अलावा जुग जुग जियो में हमने देखा था नीतू सिंह को अनिल कपूर के साथ। और ये सभी फिल्में ये साबित करती हैं कि आप की जो प्रतिभा है वो हो सकता है कि हमेशा लोगों के सामने न हो, लेकिन जैसे ही मौका मिले अपने हुनर को दोबारा से साबित करने का, जो हुनरमंद लोग होते हैं वो बड़ी बखूबी वो काम कर लेते हैं, सबके सामने फिर से एक बार ले आते हैं खुद को, खुद की प्रतिभा को, और बता देते हैं कि भाई मैं जो कभी हुआ करता था वो आज भी मैं हूँ, बस फर्क क्या है कि मैंने जो अपना रास्ता है वो थोड़ा बदल लिया था। तो इस तरह के हुनरमंद लोग आप भी शायद हैं, तो अपने अंदर के हुनर को जगाए रखिएगा, न जाने कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक और बेहतरीन गीत की ओर। आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ है और ये वाला गाना जो है बहुत आइकॉनिक गाना है। जब जब हम ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बात करते हैं, ये गाना जो है ये सबसे पहले जहन में आता है। खेल खेल में फिल्म से गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार है राहुल देव बर्मन का। सुन रहे हैं आप FM रेनबो कोलकाता चैनिका के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सुन रहे थे आप चैनिका के साथ, हम साथ साथ। और छायालोक का ये सफर, इस पहले घंटे का सफर अभी फिलहाल यहीं पर हम समेटेंगे और आप दूसरा घंटा सुनेंगे देविका के साथ। देखिए, ये इतने सारे गीतों के बीच में, इन गीतों के खूबसूरत से मीठे से मझधार में फंस के कभी कभी होता है ना कि जबान जो है आपकी वो थोड़ी इधर की उधर हो जाए। तो देविका का नाम लेते हुए मुझे भी लगा कि ये जो ट्रांस बना अभी यहाँ फिलहाल एक घंटे का, मैं इसमें एकदम से निमज्ज हो गई थी, फंस गई थी, लेकिन अब निकलना पड़ेगा यहां से। लेकिन आपको छोड़े जा रही हूं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ, वही जोड़ी नीतू सिंह और ऋषि कपूर की। और आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम छायालोक का दूसरा घंटा और उसके आगे भी बहुत कुछ रहेगा बरकरार। शानदार जानदार, ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।
1: वेल फ्रेंड्स, कुछ गीतों को सुनकर और कुछ लोगों को सुनकर ऐसा लगता है कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो चैनिका, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जाओ स्टूडियो छोड़कर, क्योंकि देविका आ गई है। तो चैनिका और देविका की ये जो जिगलबंदी है काका की, वो हम आगे बढ़ाएं।
2: अब देखो, अगर तुम ऐसे ही मुझे रोक लोगी और कहोगी कि ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हॉट सीट एक है।
1: मतलब तुम कहना चाहती हो छोड़ दो, आंचल जमाना क्या कहेगा।
2: बिल्कुल। अरे ये कुर्सी का मामला है भाई। कुर्सी अब तुम्हारी, तुम संभालो।

0: रात 9 बजे तक।
1: ओहो, तो चैनिका अब कह रही है कि मैं चली अब तुम संभालो। तो ठीक है चैनिका, कोई बात नहीं, लव यू जिंदगी। इस गीत के साथ आपका स्वागत करते हैं चैनिका और देविका। देविका तो है यहाँ, चैनिका जा रही है आपसे कह के
2: लव यू जिंदगी।

वेल फ्रेंड्स, लव यू जिंदगी बोलते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं यानी आपकी दोस्त और होस्ट देविका लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और छायालोक आप सभी के लिए आज के लिए मैं जो सेकंड हाफ है वो लेकर आई हूँ कुछ बेहतरीन तरानों के साथ, बेहतरीन नजरानों के साथ। फिलहाल आपके लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना, और ये तराना कहता है पटाखा गड़ी। जी हाँ, आप सुनेंगे इस गीत को फिल्म हाईवे से। तो अपने जीवन को जिए बिंदास और सुनते रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स देविका के साथ।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे तू ही जुनून। ये गीत सुन रहे थे आप मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम धूम 3 और 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर छाया लोक के अंतर्गत आप सुन रहे हैं इन तरानों को। एक के बाद एक बेहतरीन तरानों के नजराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, कॉकटेल फिल्म से आप सुन रहे थे माशू का, और ये जो गीत था, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:28:40, और आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन तराने और भी हैं हमारे पास, तो एक के बाद एक

सभी गीतों को आप कर सकते हैं एंजॉय, क्योंकि कार्यक्रम 107 एफएम पर जो जारी है उसका नाम है छायालोक, और छायालोक में आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन तराने।

दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे इस गीत को जैस्मिन सैंडलर्स के साथ गैरी संधु की आवाज में। फिल्म का नाम था स्ट्रीट डांसर। जी हाँ, 3D में आई थी ये फिल्म। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में डांस को लेकर ही ज्यादा चर्चे थे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रीट डांसर इस फिल्म का नाम है। तो दोस्तों, फिलहाल आप सभी के लिए पेश है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फिल्म से टाइटल ट्रैक।

107 FM रेनबो पर हर्षदीप कौर के साथ आपने सुना बेनी दयाल की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम बैंग बैंग। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

वेल फ्रेंड्स, अरिजीत सिंह के साथ शाश्वत सिंह की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तमाशा से। और आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी के लिए पेश है राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में, फिल्म का नाम जब तक है जान। सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाया लोग।